0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं उमंग परिवार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है, ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए NCERT की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का। लिखते हैं, बहुत चर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं विमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक

0: जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था। आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम इवरॉन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है, जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं।
0: तो बच्चों, ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
2: मुझे अच्छी लगती है।
3: मुझे बहुत पसंद है।
4: मुझे भी पसंद है।
5: मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों, आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
1: जी सर।
6: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: ठीक है,
1: ठीक है।
7: बहुत अच्छा लगा।
0: तो बच्चों, कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
1: हाँ।

0: तो अब बच्चों मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
1: जी सर, तैयार हैं।
0: तो शुरू करते हैं कविता। हैं कई प्रदेश के,
1: हैं कई प्रदेश के,
0: किंतु एक देश के,
1: किंतु एक देश के,
0: विविध रूप रंग हैं,
1: विविध रूप रंग हैं,
0: भारत के अंग हैं,
1: भारत के अंग हैं,
0: भारतीय वेश एक,
1: भारतीय वेश एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: बोलियां हजार हैं,
1: बोलियां हजार हैं,
0: टोलियां हजार हैं,
1: टोलियां हजार हैं,
0: कंठ भी अनेक हैं,
1: कंठ भी अनेक हैं,
0: राग भी अनेक हैं,
1: राग भी अनेक हैं,
0: किंतु गीत बोल एक,
1: किंतु गीत बोल एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: एक मातृभूमि है,
1: एक मातृभूमि है,
0: एक पितृभूमि है,
1: एक पितृभूमि है,
0: एक भारतीय हम,
1: एक भारतीय हम,
0: चल रहे मिला कदम,
1: चल रहे मिला कदम,
0: लक्ष्य के समक्ष एक,
1: लक्ष्य के समक्ष एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो बच्चों कैसी लगी कविता?
1: मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छी तो लगी। तो अब बताइए, अभी हमने सुना हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, क्या सुना हमने?
1: हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
0: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
1: भारत।
0: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
2: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
3: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है।
4: असम में मेरे दादा रहते हैं।
2: और एक और मैं बताऊँ, पंजाब।
0: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों हमारे देश में कुल 28 प्रदेश या राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अब जरा बताइए, क्या इसी कविता को गीत में सुनना चाहते हैं?
5: बहुत मजा आएगा।
0: तो चलिए सुनते हैं ये गीत, हम अनेक किंतु एक। क्या?
1: हम अनेक

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफलमैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय, आप सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी, आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा, वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी, वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा, तो मेरे संजय बेटे को सब याद है।
1: हाँ चाचा जी, मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई, क्यों नहीं बताया था? जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी, क्या हुआ?
0: हाँ तो संजय बेटा, उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।
0: अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हमारे देश पर हमला कर दिया?
0: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए। छक्के?
2: साथियों, ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
3: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
2: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।
4: चल मार्च! चल! चल!
3: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वो एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
2: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघा।

0: अपनी यूनिट में वो एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
1: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
0: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
1: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
0: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
1: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: वो लोग ऊंचाई पर लोग
3: साथियों, बिल्कुल ठीक है। आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
2: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है। वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
3: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
2: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक
4: रहेगा संजय भाई, यही ठीक रहेगा संजय भाई।
3: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।
2: ठीक है,
3: फिर हमें मिशन शुरू करना है।
2: राइट, ठीक है संजय भाई, बिल्कुल ठीक। तो शुरू करें?
3: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल ले। पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।
2: आजा मुकेश, आजा।
1: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
0: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
1: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय

0: और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा।
1: आगे बढ़ो, बच लो, जवाब दो।
0: राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
2: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
3: बिल्कुल ठीक।
2: आंख में आंख डाल के फायर करो, फायर।
4: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था, वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गई।
2: कार्बाइन खाली हो गई है।
1: क्या करूंगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो, ठहरो।
2: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
4: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
0: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में 3 गोलियां लगी, जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।
2: दुर्गा माता जय।
0: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
4: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।
2: भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अब कहां भागते हो? और रुको, ठहरो, हिम्मत है तो सामने आओ। चलो साथियों, तुम्हें से कोई बचकर नहीं भागेगा। मारो।
0: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
5: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको आपको तुरंत उपचार की जरूरत है। वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली।
6: आपको वहाँ ले चलते हैं।
5: वहाँ चलते हैं।
6: गर्म पट्टी करवा लीजिए, कम से कम खून का बहना रुक जाएगा।
5: आओ भाई जी,
7: नहीं मानसिंह,
5: आओ तो सही।
7: चिंता मत करो, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
6: लेकिन जी, लेकिन
7: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हूँ।
6: अरे
7: आप, तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
5: आप सुनो,
7: छुपा हुआ ना,
5: आप
7: कोई बचने ना पाए, जाओ चेक करो।
5: लेकिन
7: करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा मुझे।
5: अरे
7: जाओ,
5: आप
7: सुनो तो।

0: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैट टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
1: संजय भाई, इधर आओ।
2: क्या जगह
1: था? संजय भाई तो बोल ही नहीं रहे।
3: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया।
0: देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राइफलमैन संजय कुमार। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग।

अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on these numbers, 2331 7106, and of course do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे फोन नंबर 2331 4444 2331 0481 और 2371 7106 पर फोन कर सकते हैं. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 भी डायल करें. कृपया याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए आज हम स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी नमस्कार.

0: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हेडलाइंस के साथ अनुभा रोहतगी।
2: थैंक यू अमित। Benchmark domestic indices decline. Sensex sheds over 500 points. Nifty settles at 22,363. Country's retail inflation rises to 5.54% in September this year. And global crude oil prices rise over 1%.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स में 500 से अधिक अंकों का नुकसान, निफ्टी 22,363 के स्तर पर दर्ज। सितंबर के दौरान खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.45% दर्ज हुई और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 1% की तेजी।

0: And before we give you the economic details, the stories, very important announcement for you, our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार आज कारोबार की शुरुआत में मजबूती के साथ तो खुले, लेकिन शुरुआती बढ़त कायम न रह सकी। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% की गिरावट से 548 अंक गिरकर 71,925 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% के नुकसान से 157 अंक गिरकर 22,363 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में मामूली बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.4% की मजबूती के साथ बंद हुआ।
0: Benchmark domestic equity indices failed to hold their initial gains and ended in the negative zone today. The Sensex declined 548 points, nearly 0.8%, to close at 71,925. The Nifty dropped 157 points or 0.7% to settle at 22,363. However, the broader market at the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. The Mid-Cap 100 index edged up marginally and the Small-Cap 100 index gained 1.4%.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों में आज नुकसान दर्ज हुआ। नुकसान उठाने वाले प्रमुख शेयरों में आईटीसी 3.2%, टेक महिंद्रा 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.1% की गिरावट से बंद हुए। हालांकि बीएल 1.4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.8% और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 0.7% की बढ़त से बंद होने में कामयाब रहे।
0: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, hospitals shed 2%, FMCG fell over 1.3%, and PSU banks dropped 1%. In contrast, housing finance gained nearly 1.9%, capital goods jumped 1.3%, and realty added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,291 companies advanced, shares of 2,164 companies declined, and shares of 281 companies remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 96 पैसे की मजबूती से 95.78 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। और सबसे पहले श्रोता के तौर पे दिल्ली से जगदीश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार सर, गुड इवनिंग।
1: नमस्कार।
2: हाँ जी, मैं जगदीश जोशी बात कर रहा हूँ नांगली दिल्ली से।
1: जी,
2: तो मेरा क्वेश्चन, हालांकि दो क्वेश्चन थे लेकिन एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा आउट जा रहा है उस प्रोग्राम से। तो पहला क्वेश्चन ये कि अभी कुछ दिन पहले शुगर का प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से या जैसे भी हुआ तो प्राइस कुछ कंट्रोल में लगभग आया था, तो फिर दोबारा से धीरे धीरे प्राइस वही जा रहा है। तो क्या दोबारा स्टॉक मतलब कंट्री में है नहीं, या फिर दोबारा से जो कालाबाजारी जो उनके लिए स्टॉक की जो लिमिट रखी थी उससे ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं वो लोग फायदा, मर्चेंट लोग फायदा उठा रहे हैं?
1: जी, जी,
2: बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, इसके थोड़ा एक्सपर्ट राय दीजिए।
1: चीनी की उपलब्धता और चीनी का स्टॉक कितना है, चीनी की कीमतें कैसे रहेंगी?
3: जोशी साहब, देखिए, एक तो त्योहारी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इसके बाद एक के बाद एक दूसरे त्यौहार हैं, तो इन त्योहारी मौसम में मांग में काफ़ी तेज़ी की उम्मीद है, जिसकी वजह से आप कीमतों में उछाल एक बार फिर से देख रहे हैं। हालांकि कीमतें अभी उस स्तर पर नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ, एक रुपया भी बढ़ता है तो वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय होता है। और जहाँ तक सवाल

0: स्टॉक लिमिट का है, तो देखिए स्टॉक लिमिट में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपको किसानों के हित का भी ध्यान में रखना है, चीनी मिल के हितों का भी ध्यान में रखना है, और उनसे भी सबसे ऊपर है कि आम ग्राहकों के हितों को ख्याल में रखना है। आप जितने भी बंदिशें लगाएंगे, कीमतें बढ़ने की आशंका उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो अभी के समय में बहुत अच्छी खबर तो मेरे पास आपके पास आपके लिए नहीं है कि दाम में कमी आएगी, बहुत ज़्यादा कमी आएगी, लेकिन हाँ उम्मीद ये कर सकते हैं कि अक्टूबर के बाद, माफ़ कीजिएगा, नवम्बर के बाद जो है 15 नवंबर के बाद थोड़ी सी कीमतों में गिरावट आए।
1: Let's move on to the next story. HCL Technologies today reported its financial results for the second quarter of the current financial year, that is from July to September. The company's revenue from operations increased around 11.5% on an annual basis to 35,620 rupees. The company's net profit rose over 21% to 5,132 crore rupees on an annual basis. HCL Tech also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. Shishir, you know, the markets have opened today, the first day of the week, on a negative note. Yeah, last week it ended, of course, it was an 8-week high that the markets ended, after 8 weeks that the market closed in green. But today again, we are seeing the markets going down.
0: The problem is that the barrage of bad news is still too stopped. That is one of the big problems. So if you see the crude price is almost around $105 yes. a barrel. Then we are seeing a lot of attack news about the attack in Saudi Arabia. That means the more disruptions possible in the crude oil market. Then there was expectation that inflation is expected to go up, as we have seen that inflation is now 5.54%. And that is giving a kind of expectation that when the MPC will meet in the month of December, there could be another rate hike. Yes. So this was the third one. And the other thing is about the China. In China also today we saw a lot of down in all the stocks. Yep. So combination of all the bad news had an impact on the stock market. And market is still looking for some kind of positive news. But unfortunately, they are getting nothing. And that is why we are seeing a lot of selling pressure in the market.
2: मुंबई से अगले श्रोता के तौर पर रत्नाकर हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
3: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि हमारा जो पोर्टफोलियो में शेयर्स है वो ब्लड रिलेशन में मैं मेरे लड़के के नाम, मिसेस के नाम पर कर सकता हूँ क्या, ये सवाल है। और आने वाले समय में पेट्रो के शेयर्स कैसे रहेंगे, ऑयल के शेयर्स में परचेस करना कैसा रहे?
0: ऑयल में कौन सा, आप जो तेल उत्पादन करती हैं या तेल की मार्केटिंग करती हैं? चलिए, पहला जो आपका प्रश्न है कि क्या आप अपनी पत्नी के नाम अपने शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो ट्रांसफ़र जो है वो मार्केट प्राइस पे होगा, तो कैपिटल गेन की भी बात बन सकती है। बेहतर है उनको नॉमिनी बना करके रखिए कि कल होकर के कोई भी दिक्कत होती है तो उनके पास सीधे सीधे वो शेयर पहुँच जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि तेल का क्या हाल रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस समय में जितनी भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में आपको तेजी दिखेगी। जो मार्केटिंग कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ देश में तीन हैं, उनके शेयरों में थोड़ी गिरावट दिखेगी, उनके मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ने की आशंका। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं बढ़े हैं, अगर बढ़ते हैं तो इन कंपनियों को कुछ हद तक फायदा होगा, अभी उनके लिए अंडर रिकवरी है, तो जिसकी वजह से उन कंपनियों में हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। संजीव हैज जॉइंड अस फ्रॉम न्यू दिल्ली। संजीव, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: नमस्कार, गुड इवनिंग टीम मार्केट मंत्रा, एंड गुड इवनिंग सुषमा।
0: गुड इवनिंग।
4: हाँ सर, एक सवाल अभी आपसे सुन रहे थे कि रिटेल इन्फ्लेशन हैज गॉन 5.45 फॉर ए कंज्यूमर, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा सब्सिडाइज अनियन सप्लाई करना शुरू किया था एट द रेट ऑफ 35, वेयर एज द मार्केट प्राइस इज 75। अब वो पिछले 3-4-5 दिन से देयर इज नो सप्लाई ऑन एनी ऑफ द आउटलेट, विच इज एडिंग टू द कोर इन्फ्लेशन फॉर द कंज्यूमर्स टू बाय।
0: जो गवर्नमेंट के डोमेन में आती है कंज्यूमर आइटम सप्लाई करना,
4: उनकी सप्लाई तो ऐसे ऐसे माहौल में थोड़ी सी रेगुलर होनी

0: चाहिए. दैट्स ऑल माय क्वेश्चन.
1: देखिए, आज की जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, जिसके बारे में और ब्यौरा बाद में इस कार्यक्रम में दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं अगर मैं आपको शुरुआती आंकड़े करूं, तो जो 5.54% महंगाई के आंकड़े हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका प्याज की रही है, जहां पर हमने महंगाई दर सितंबर के महीने में 108% देखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है. और दूसरे अलावा और भी 3 सब्जियों की अगर हम बात करें, भिंडी की बात करें, माफ़ कीजिएगा, भिंडी नहीं, अदरक की बात करें, लहसुन की बात करें और नींबू की बात करें, यानी कि टॉप 5 आइटम्स में 4 आइटम्स ऐसे हैं जो हमारी आपकी थाली से जुड़ा हुआ है, जिसको आप थालीनॉमिक्स भी कह सकते हैं. अब आपका प्रश्न है कि सरकार इसका आपूर्ति इसकी क्यों नहीं बढ़ा पा रही है. इस बार प्याज की पैदावार में थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो आपूर्ति होता था वो नहीं है, और जो स्टॉक भी जो रहता था वो उस तरीके का नहीं है. तो मदर डेयरी पे, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो है वो प्याज की आपूर्ति की जा रही थी, प्याज अभी भी वहां पर उपलब्ध है जहां तक मेरी जानकारी है, जितनी मेरी समझ मैंने देखा है. और बाकी जो जिसको कहते ना कि वो ट्रक लगा करके जो दिल्ली में आपूर्ति की जा रही थी, वो भी चल रहा है. लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखें कि इस बार प्याज के पैदावार पर थोड़ा असर पड़ा है. एक अच्छी खबर ये आ रही है कि कर्नाटक में और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ प्याज की पैदावार होती है, वहाँ से नई फसल जल्दी ही बाजार में आएगी. तो आप नवरात्रि के बाद गिरावट होना जो है वो आप उम्मीद कर सकते हैं.
2: और नवरात्रि में वैसे भी बहुत सारे घरों में प्याज की आपूर्ति,
1: और नवरात्रि के ठीक अगले दिन प्याज की कीमत काफी ऊंची होती है.
2: जी शिशिर, वापस से घरेलू बाजार के बारे में मैं आपसे कहूंगा, बाजार में टिगर नहीं है, कच्चे तेल की कीमतों ने उसमें कहीं ना कहीं और जो सेंटिमेंट्स हैं उसको और दबा के रखा है. क्या जो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं, हम कुछ ही दिनों में हम देखेंगे, क्या वहाँ से बाजार कुछ अच्छी खबरों की उम्मीदें नहीं कर रहा, या बाजार को वहाँ से ट्रिगर नहीं मिल पा रहा?
1: देखिए, पॉजिटिव तो वहाँ से है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे अभी आप एक और तथ्य उसमें जोड़ लीजिए, वो ब्याज दर है. और ब्याज दर शेयर बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है.
3: जी,
1: ब्याज दर बढ़ती है तो हम आप सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो बैंक में ही पैसा रखो या ऐसे जगह पे रखो जहाँ आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार में अब ब्याज तो मिलता नहीं है, और शेयर बाजार में आमदनी आपकी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. तो हमारे बड़े जो विदेशी निवेशक हैं वो कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें काफ़ी ऊंची है. और भारत में भी एक शुरुआत हो चुकी है, अगली शुरुआत हम उम्मीद तो नहीं, मतलब आम श्रोता के लिहाज से अगर करें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई उससे हम भाग भी नहीं सकते कि दिसंबर में ब्याज दर फिर बढ़ने की उम्मीद है. अब ऐसे में बाजार के लिए तो खबर वैसी नहीं है जो बाजार को अचानक उछाल दे. दूसरी तिमाही के नतीजे, मुझे उम्मीद है कि कुछ कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे. शुरुआत जो है वो एक दो से हो चुकी है, उनके नतीजे जो है एक संकेत जो दे रहे हैं कि नतीजे अच्छे आएंगे. लेकिन बाकी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो इस सकारात्मक को बढ़ावा दे, बल्कि उस सकारात्मक को दबाने के लिए नकारात्मक खबरों की बाढ़ आ गई.
3: शिशिर, यू नो अमित इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ triggers, but before I come take my question to you, we have the next caller with us online. Nitin is calling us from Delhi. Nitin, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
4: नमस्कार जी.
3: नमस्ते, अपना सवाल पूछें.
4: सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बैंक में हम FD कराते हैं और एक साल के बाद हम मैच्योर होने पर FD लेके आते हैं, तो उसमें हमारे को अलग से कंपाउंड ब्याज मिलता है, वो किस ढंग से उसको माने, किस ढंग से वो कंपाउंड ब्याज माना जाएगा? उन्होंने हमें ये बताया कि 3 महीने भी ले सकते हैं, 1 महीने भी ले सकते हैं, पर आपका प्रिंसिपल फिर लास्ट में 1 साल के बाद वही मिलेगा, फायदा नहीं होता, 1 साल के बाद आप लेंगे तो कंपाउंड रहेगा. दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे हम गोल्ड खरीद के लाएंगे तो अगर हम उसको प्योर गोल्ड लेके आएंगे, ना कि हम कोई जेवर बनो के, तो जो गोल्ड हम सिक्का लाएंगे तो उस सिक्के को हम सेल लेंगे तो जो वैल्यू हम लाएंगे तो उसके बाद वो हमसे रिटर्न में लेता है कि नहीं लेता है? ऐसा कभी कभी होता है कि वो नखरेते हैं कि पेमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, तो दिक्कत तो नहीं आती गोल्ड परचेज?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं. पहला आपका जो प्रश्न है ब्याज को लेकर के, तो बैंक में आप जितने मियाद के लिए आप रखेंगे उस हिसाब से ब्याज का आकलन होता है. और जो बैंक अगर सालाना आधार पर ब्याज का आकलन करते हैं और आपने एक ही साल पे ले लिया, तो एक साल के अंत में जो ब्याज की दर होगी वो आपको मिलेगी.
3: शिशिर, मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं, जब ब्याज मिलता है तो एक आपको बैंक ऑप्शन देता है कि आप क्वार्टरली लेना चाहते हैं.
1: मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि पहला, आपने अगर एक साल के लिए ब्याज के लिए, एक साल के लिए आपने टर्म डिपॉजिट किया है और वहां पर आपने एक साल के लिए जिस दिन आपने ब्याज, जिस दिन आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया, उसी दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. और आपने देखा होगा कि

0: आपको एक जो स्टेटमेंट मिलता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको एक साल के अंत में कितना पैसा मिलेगा, तो वो तो स्पष्ट है ना। अब आप उसको तीन महीने में, छह महीने में, साल भर की बात करते हैं, लेकिन वो तीन महीने छह महीने की बात नहीं। अगर आपने साल भर के लिए कर रखा है तो साल के अंत में मियाद पूरी होने के बाद मूल और ब्याज आपको दोनों मिलेगा, तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं आती। चक्रवृद्धि ब्याज की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जब आप दूसरे साल में जाएंगे, तीसरे साल में जाएंगे, तो जो रकम आपके पास जमा है उस पर ब्याज की दर का आकलन होगा। दूसरा इनका प्रश्न था कि सोना जो खरीदते हैं सिक्के के तौर पर और उसे बेचने जाते हैं, तो किसे आप बेच रहे हैं? किसी एक संगठित जगह पर बेच रहे हैं या किसी असंगठित जगह पर बेच रहे हैं? और सोने को लेकर के अगर आप संगठित जगह पर जाते हैं तो आपको नकद तो मिल जाता है जो उस समय आपके भाव है। गहना बिल्कुल सही है, गहना खरीदने के बाद दिक्कत यह है कि अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो उसमें जो मेकिंग चार्ज है और जो उसमें जो कुछ भी पत्थर लगे हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो पता चलता है कि आपने 100 दिया था, हो सकता है कि आपको उससे कम मिले भले ही सोने का भाव बढ़ जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें कट जाती हैं
1: जी। सो लेट मी कम बैक टू माय क्वेश्चन। वी वर टॉकिंग अबाउट एज यू नो अमित वाज सेइंग दैट देयर इज लैक ऑफ ट्रिगर एंड as we were discussing that the coming days equity markets may, you know, they are not getting positive triggers from anywhere. But for an investor who is looking at a mid and who has a mid or long term horizon, wouldn't you say that this is a really good time to, you know, because there's a, like some people are saying that there's been a correction in the equity prices, in the stock market, you know, share prices. And so would you say that this is a good time to actually go in and, you know, buy quality shares, top shares? And
0: certainly, because market always needs money as well as the patience. Unfortunately, we always look for money and not for the patience.
1: Yes.
0: So what happens that when there is a correction in the market, we say, oh, we are going to lose everything. But those are the, I mean, something, most of the time it is a notional loss.
1: Yes.
0: So if you are putting money at this moment and when you are finding the quality stake at a stock at a very low price, that's really good time. My only suggestion is that please do not put entire money into the stock market.
1: Yes.
0: You should also have some kind of hedging through the banks. You should also have some kind of hedging through the post offices. And you should also have some money put into the mutual fund.
1: Yes.
0: And among, apart from these three, if you put just 10% of total surplus money into gold, that would be really good.
1: Right.
2: अगले श्रोता के तौर पे महाराष्ट्र से के शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अपना सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: मेरा क्वेश्चन ये था कि टीयर टू जो सिटी है, मतलब टीयर वन में जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ या बड़ा सिटी, वहाँ बंदरगाह होता है, पोर्ट, तो वहाँ इनकम का स्रोत जाता होता। टीयर टू आने वाले समय में किस लेवल पे इकोनॉमिक के तौर पे डेवलप हो सकता है?
0: देखिए, मझोले और छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और आपको एक चीज़ बता दें कि कई ऐसे कंपनियां हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इन शहरों में जाकर के काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन शहरों में श्रम की लागत थोड़ी सी कम होती है, उन शहरों में ट्रैफिक कंजेशन की समस्या नहीं होती है। इनफैक्ट हम आपको बताएं कि आईटी कंपनियों ने कई अपने कॉल सेंटर ऐसे जगह पर खोले हैं जहाँ पर लोग उम्मीद भी नहीं करते थे वहाँ पर, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों या फिर हम बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों की बात करें, वहाँ पर खोले हैं। तो छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, और यही वजह है कि हमने देखा है कि जब जब उस शहर के आसपास में सड़क अच्छी बन गई हैं या फिर वहाँ पर यातायात की अच्छी व्यवस्था हो गई, उन शहरों का और बेहतरी हुआ है। तो आप अगर छोटे शहर में हैं या मझोले शहर में हैं तो वहाँ पर आर्थिक परिस्थितियाँ और बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है।
2: शिशिर, अगर रुपये की स्थिति पर आते हैं, रुपये ने तकरीबन आज 1 रुपये के आसपास डॉलर के मुकाबले बढ़त हासिल की है, क्या दर्शाता है? क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए थे, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए एक डॉलर विंडो भी स्थापित की थी, हालांकि इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी हैं, शायद सीआरआर रेशियो में भी कुछ बदलाव की उम्मीदें या आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं।
1: सीआरआर रेशियो ऑलरेडी बढ़ा दिया है बैंक्स ने।
0: देखिए, अभी जो शनिवार को इन्होंने 3 कदम उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, और उसके साथ ही साथ जो डिलीवरी फॉरवर्ड मार्केट के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, इसका एक सकारात्मक असर पड़ा है। उम्मीद करनी चाहिए कि अभी यह असर कुछ समय तक बना रहेगा।
2: और नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.6% की गिरावट से बंद हुआ। जापान के शेयर बाजार में अवकाश रहा।
1: And now let's take a look at the retail inflation for the month of September. It accelerated

0: to 5.54% in September on an annual basis, remaining above the Reserve Bank of India's target of 4% for the fourth consecutive month this year. Last month's inflation reading was higher than the 4.83% recorded in August. According to the data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, inflation in rural areas increased to 6.08%, while in urban regions it rose to 4.88%, and food prices continue to remain a key driver of inflation. A very brief comment from you.
1: Anubha, just one thing. It's a median target rate of 4%, which we have breached. In fact, that was breached last month itself. Now, the concern is that if it exceeds 6%, then there will be a bigger problem. So, and as of now, we are expecting that it will breach.
0: It will breach.
2: Delhi se Shri N.P. Singh hamare saath maujood hain.
3: Ji, sir, good evening to the all panelists. I just want to know that it's about UPI. If the UPI amount is 3,000 and we divide the payment into 2,000 and 1,000 in two times, so then also it will attract the, you know, the surcharge.
1: If it is less than 2,000, then there won't be any MDR. And if it is more than 2,000, then only it will impact the thing. So your question is that if I pay just 2,000 rupees and 1,000 rupees, will it attract the MDR? Yes, of course, it will. 2,000, for the 2,000 rupees, it will, because 2,000 or more. So it will attract MDR. But please remember, you don't have to pay the MDR. It is a customer. It is a shopkeeper who has to pay at the time of getting money from the bank or the institutions.
2: कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. घरेलू म्यूचुअल फंड बाजार में सितंबर माह में 38,306 करोड़ रुपए का निवेश आया है. यह राशि पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है. भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने एसआईपी के माध्यम से होने वाला निवेश बढ़कर 32,490 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. सितंबर माह में इक्विटी एंड कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड में सर्वाधिक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ. इसके बाद मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में निवेश आया. हालांकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और कॉन्ट्रा फंड योजना में कुल मिलाकर निकासी हावी रही. इस दौरान गोल्ड एक्सचेंज फंड का निवेश 71.4% की बढ़त से 4,451 करोड़ के स्तर को तक पहुंच गया. हालांकि सितंबर के दौरान म्यूचुअल फंड से कुल मिलाकर निकासी हावी रही और 1,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि म्यूचुअल फंड योजना से निकाले गए. इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक दिल्ली से हमारे साथ आकाश मौजूद हैं. जी आकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए.
4: हेलो सर, नमस्ते.
2: नमस्ते
4: सर, मैं काश बोल रहा हूँ. मेरे दो सवाल है सर. पहला सवाल ये है, मेरी एफडी बनी हुई है तो उसमें एक साल होने के बाद हमारे को मैच्योर हो चुकी है
2: जी.
4: तो उसमें जैसे कि उन्होंने कंपाउंड नहीं दिया, तो दूसरा सवाल जैसे कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने एफडी में इन्वेस्ट करा है अभी, तो गोल्ड जैसे एफडी का तो अमाउंट वही मिलेगा जितने भी परसेंट आएगा, तो गोल्ड में जैसे अप डाउन होता रहता है मार्केट प्राइस, तो हमें गोल्ड लेना सही रहेगा या एफडी में ही हमें बने रहना चाहिए, और कंपाउंड की कंप्लेंट किस अधिकारी पे करें हम?
1: देखिए, आपकी शर्त क्या थी जब आपने फिक्स डिपॉजिट लिया था? अगर उस समय जिस शर्त पे आपको भुगतान किया जाना है, उसी शर्त पे भुगतान होगा. ये याद रखिए कि जिस तारीख को आपने एफडी ली है. रहा सवाल सोने का, सोने के कीमतों में अगर उतार चढ़ाव होता है तो जाहिर सी बात है कि आपने अगर ऊंची कीमत पर खरीदी है और उससे ज़्यादा कीमत ऊपर नहीं जा रही, तो आपको नुकसान होगा.
0: And let's move on to the next story. The 2026 Nobel Prize in Economics has been awarded to American economists Robert E. Hall and Mike Woodford for developing macroeconomic models that help policymakers stabilize economies during booms and recessions. The Royal Swedish Academy of Sciences said their work has strengthened the theoretical basis for fiscal and monetary policies and improved governments and central banks' ability to respond to economic fluctuations. The Nobel Committee said the economists developed models based on how households and businesses make decisions about spending, saving, investment and pricing, taking future economic conditions into account. Robert E. Hall is a professor at Stanford University, while Michael Woodford is a professor at Columbia University. And we have with us Shankar online from Bhopal. Shankar, welcome to the program, but please make your question very short. We are running out of time now.
5: Yeah, my quick question to Market Mantra team and Sarit. Sir, जो भी गलत हो सकता था वो शायद इंडिया हिंदुस्तान के नजरिए से गलत हो चुका है. अब और कोई गलत जाने या खराब होने की उम्मीद नहीं है, तो have we touched the rock bottom? क्या अब यहाँ से हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें? क्या आप

0: बाजार कितने स्तर पे जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां।
1: ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज कॉल्ड फॉर डबलिंग इंडिया यूके बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। मिस्टर गोयल सेड दिस व्हाइल एड्रेसिंग द बिजनेस प्लीनरी अंडर द 16th सेशन ऑफ द इंडिया यूके जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी इन न्यू दिल्ली टुडे। द मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन बिजनेसेस इन बोथ कंट्रीज टू ट्रांसलेट द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय द इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट इन टू एक्सपेंडेड ट्रेड इन्वेस्टमेंट partnerships and job creation. And let's move on to commodities now. Global crude oil prices reversed course and moved higher today amid skepticism over US President Donald Trump's announcement of energy ceasefire between Ukraine and Russia. Brent crude was trading 1.2% up at $105.99 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading over 1.2% higher at $92.98 per barrel at the time of writing this report.
2: घरेलू सराफा बाजार में सोना 0.9% की गिरावट से 1,48,061 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग आधा प्रतिशत के नुकसान से 2,20,295 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। बहुत संक्षेप में अगर दोनों चीज़ों पे कच्चे तेल की कीमतें निरंतर दबाव बढ़ा रही हैं, लेकिन सोना चांदी भी कहीं ना कहीं अभी दबाव में ही नज़र आ रहा है।
0: बिल्कुल, सोना जब तक डॉलर मजबूत होगा सोना उतना ही कमज़ोर होगा, और कच्चे तेल की जहाँ तक बात करें, सऊदी अरब और उन जगह पर हमले होंगे तो आप उसके ऊपर दबाव पड़ने मतलब उसकी कीमतों में बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते।
2: जी शिशिर, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: और अब चलते चलते एक नज़र आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स शेड्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,363। कंट्रीज रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 5.54% इन सितंबर दिस ईयर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज ओवर 1%। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। वी'ल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। फॉर नाउ गुड बाय, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है। साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए भी सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार

0: प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उसने सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं। इनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। एस्टोनिया के नव निर्वाचित राष्ट्रपति उल्ले मादिसे ने राजधानी तेलिन में एस्टोनियाई संसद भवन रीकी कोगू में पद की शपथ ली। उन्होंने श्री अलार कारिस का स्थान लिया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெற்றது. சில நொடியில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है. नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे. केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया. श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है. ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है. साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है. इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए. उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया. श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाएं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है.
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो. पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें. यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है. आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतर खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है. केंद्र ने कल सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी. न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी. मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है. सिक्किम के

0: நிறைவு பெற்ற நினைவில் இன்றைய தொடர்வது செய்திகள்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है। साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। कल नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रज मोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की प्रगति के लिए तकनीक और परंपरा को साथ चलना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कल नई दिल्ली में निरामयता, दक्षिण एशियाई ग्रंथों और प्रथाओं में उपचार और स्वास्थ्य देखरेख प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद ये बात कही। डॉक्टर

शंकर ने कहा कि निरामयता व्यक्ति, समाज और प्राकृतिक दुनिया के बीच के संबंधों की सभ्यतागत समझ की खोज है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार, नवाचार, विज्ञान और व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष, नागरिक, परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत ब्रिटेन सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुले। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ. सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियाँ कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तथा उद्योग प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण कैटलॉग का शुभारंभ किया। ये स्वदेशी तकनीक प्रदर्शित करने और उद्योगों द्वारा उनके हस्तांतरण अपनाने तथा व्यवसायीकरण को सुगम बनाने के लिए विवरण सूची अनुसंधान और उद्योगों के बीच की दूरी पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रिजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला राष्ट्रीय सरस मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु पुदुचेरी में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO Business Plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi yesterday. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms and enhanced collaboration. He said this will unlock

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है. नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने कहा

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மை மனோஜ். बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में शामिल होने वाले सभी गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर श्री शाह ने कहा कि ये बैठक आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद कार्यक्रम में कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्य

0: राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय अब ये तय करेगा कि कथित अनियमितताओं के लिए दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान अलग अलग की जा सकती है या पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करना आवश्यक है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसीम के रूप में हुई है। विस्फोट का सटीक स्थान नांगी टकरी क्षेत्र में सतवाल नाकी है, जहाँ से सीमा पार से आतंकवादी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल हालिया क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों तथा परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से फोन पर बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन कर रहा है। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाले राष्ट्रीय सरस मेले में देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेले का उद्घाटन करेंगी। मेला 31 अक्टूबर तक चलेगा। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में ओलंपिक चैंपियंस और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The centre has announced to set up a high-level committee within a week to address the grievances of sugarcane farmers from Maharashtra and Karnataka. This was decided after Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan and the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Prahlad Joshi held a meeting with delegations of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra in New Delhi yesterday. Uttar Pradesh government has provided 493 crore rupees in financial assistance to farmers affected by floods, excessive rainfall, hailstorms and cyclones. In the function organized in Gorakhpur, Chief Minister Yogi Adityanath said, within just 8 to 10 days, the double engine government has made arrangements to provide compensation to the food providers for damage to their crops, houses and livestock. The CM stated that the subsidy is being transferred directly to the bank accounts of over 9 lakh farmers in the state. The Election Commission of India has extended the deadline for filing claims and objections to Maharashtra's draft electoral rolls to 26th of this month. The draft electoral rolls are published on 31st August. According to the revised schedule, the disposal of claims and objections will be completed by 10th of November, while the final electoral rolls will be published as scheduled on 16th November. The Chief Electoral Officer has urged eligible